Tanzania Global Development Bank sa Tanzania Madani antar berstatus ini sang executive penuhan soal istimewa berbagai ini sahaja sementara berstatus baik itu. Mulai jangkari perubahan mana Nepal kemudian lawan yang baik itu para akal panier di pertama kali kuli kerjai jangkari di tempat Nepal itu pengurus ni mana baik kuli kerjai. Iman sulacit dari masa mana sahaja jual jadi berita. Komisi sulacit ini mana kau kenai sah. Selama ini Nepal ini bisanya pihak ini pihak gas bersangkut mas punya dasar 1% matra mana yang akan terlepas di perjanjian ko abang abang baik itu pangkal itu sah. Semudah kerja mana jangkari perubahan mana tu kima baik itu sah. विपक्षी प्रभावित देश सरकारी संसदीय खाई के भद्रता सुधारित करना आईपीयूडी नेतृत्व दायित्व भूमिका निर्वाह करने पर प्रथम है हमें जलवायु संरक्षण का आदि पहल विपक्षी भूमिका निर्माण उत्थानशील करना जलवायु विपक्षी कार्य की पहली संसदीय सरकार निर्माण करने पर ऐसा मनाली प्रथम है कुछ इसे भी सरकारी कोटे को सीतेश्वरी हिमबाड़ी बाढ़ प्रभावित समुदाय द्वारा एकीकृत प्रयास अगर बढ़ाया गया बाढ़ी बाढ़ विस्थापित भयका को पुनर्स्थापना विपदा भयका को मृतक लाई मृतक घोषणा करना था न संसदन में छोटी व्यवस्था समझ समझना आपको पुनः निर्माण को काम की किस्मत में लिपटा रहता है इसलिए तो सा

Sokoku Romanza Corona dan Planet Macam Berita ICC Kawasan Api Sokoku Alik-alik semua calon kukir suruh memahami Super Series Malaysia Ada bebasan lebih permat Masa Afrika di mana dan kami biar masuk Terubah Aizan Ahmi Yang diusir di Sokoku Antara Tala Tani Sambit Masa lagi Tiket booking Nikai Mari-mari untuk Insya Pasal itu lah kata ada penting kelelahan perlukan misi, lah misi untuk ambil ini. Sesama kuasa bisa perlukan item perlukan misi bulan Argentina itu rasmi terlibat penting pada jasa dikelelahan misi ini kais bersama rasmi mulai kuyakkan kerana kalian terpenting kelelahan Argentina ini terlalu banyak mal dengan semua mesti kura kelelahan misi ini rasmi jasa penting pasti jangan berkesan. किसान का समस्या समाधान करने किसान कॉल सेंटर को बढ़ावा दिया गया महत्व सुधार करने पर निपक्षी होने का ही कारण है किसान बड़ी बात किसान सीएम को स्थान जहां का वसूली करना है यह सभी पांच निर्णय

0: किया मध्य कुंडली सुखता और हर चीज के लिए हर चीज के लिए हमने सब सीखते पहले तो हमको पहुंचा नहीं सीखी तो हमने कहा सीखी तो हमने बहुत कठो हमारे गाँव पर्यटन में कठो थे लेकिन मैं मार दी तो आप हिंदू में जीते दूसरी कड़ी में और बहुत ही कठो है
1: रेडियो घोटाला एफएम पुराना विकास प्रोजेक्ट साथ में कहा
0: Thank you.

0: Sajid Tajuk.
1: Danyat, dalam dari pasrat sisa berbagai santai jenderal setiawian, dalam istilah soal sisa setaru ni terutama film kodiran oleh pasrat. Dalam petang dalam masa ini, terjadi berbagai wanita, kisah-kisahi, khas dari jodoh masa mana, mereka pasal ke balun dari apa pasal yang dia mati besar kepada pasal kepada semua syarikat kepada mahu diantar kamu itu esok. Lalu khas dari mana pada pasal kepada mana pasal sahabat kamu dia balun dia kalau disukiri mana atas dari jodoh masa mana mereka keluar baru. Ya semua orang punya mandi pusing di atas tanah perak mereka di payas. Ada ini grup mana, mungkin kanan tu punya itu dia kuasa. Jo keluar rumah, jo kiam mah, orang cakap orang pasal kuasa. Ani mit kanan pemandu ni kanan ni, pasi lu punya kanan ni, dua dua itu kanan mandi sudah, kanan mandi kerja punya ruai. Isteri punya rumah, itu dia ku awal tanah. जो परिवार बाल-बाली का रूप गर्भवती सुखी महिला रूप होले जन्म रहा हूँ जब मारुलाई पुष्प खाने को रहा पंद्रह महीने अब खट्टा ना कोसे हवा बांधने पायेंगे तब तक करी जो पंद्रह महीने तेरे ना तो मैं परिवार बांधने पायेंगे तब पची तब ले कम कर दी लोगों को पानी आवश्यक भायो तब आप उनको ऐसे ही जैसे कि जब इकोताई लगे कुछ कोई तीन अवस्था में कुछ तीन समूह लगाए गए ना पसंद कर लगी गए ना क्या नम मनोर लगने ऐसे बहुत समझी अवस्था के कारण लेकिन पोषण मात्रे प्रभाव पड़े मायने पाएगा सम अब बोले लगते हैं ना बंदी को जब भी कुछ भी महिला पाल लगी गए ले पन्नू मतो हमारा फिल्म हम उसका � छोटे कुलाल से मनोसंबंध से कबस्ता तोड़तास और फिर के यात्रा की बनी कुलाल बनी वहाँ पे खाना मनोलाइन है जो अपने पोषण में से प्रत्यक्ष प्रभाव पाएगा ये पाएगा सो और विशेष करी सुधी ना इस्तांपान वगैरह लोगों को महिला हो वहाँ पे आप लोगों को ये पोषित खाना ना पाओगे तो जब आप पोषित खाना प्रयाप्त मात्रा में स्थान दान तो अब आप लोगों को अपने हमें ये भेजें तब तो समझने की डॉर ट्रास ये समर्थन को अब आप कारण निकली तो सरना प्रभाव पड़ेगा तो सरना तो बुझाई जा रहा स्थानीय सरकार केंद्रीय सरकार का विभिन्न निकाय जो अपने युद्ध संपूर्ण और प्रोफेशनल क्लस्टर को सरना होएगा हमें परंतु महिला सुधीर महिला रूप किशोर किशोर जनवाई अवार्ड ना हो स्कूली में ही पोषण में कुला वगैरह सम्मान में कुला देता काम कर रहे हैं बहुत अच्छा सर
0: हाँ सर अगर आप अगर भी ऐसे में जोड़ना फिर नहीं बोल रहा हूँ ऐसे हम यूसी रखा था नहीं
2: होगा समझ रहा हूँ स्टेप में नाम से स्वान पूजन नहीं हमें सही एक टीम से क्या डिप्लोय कर रहे थे अन्य मेरे तो एक एक्सपीरियंस है ना मेरे तो फिल्म आप होगी को ये नुकसान है ऐसे बाड़ी को ये पक्षी तैने के आजुन रिलीफ मेंटेनर्स हुए रहे तैने के सब बंदा बॉडी में आपको से 1000 बिस्कुट दे चुका था हम लोग एम्बॉसर हम अपने टेम मिस्टर हमारी पूरा 1000 बिस्कुट को काट रहे थे सुबह रहे थे तुम जाने का कि टेस्ट जो नॉर्मल नहीं है कि ये स्टोव पर आप लाते हैं पाल वाली काइन से रिलीफ खाना है रिलीफ हमने थोम जो जंग फूड से एकदम ही बॉडी मात्रा में आया था नॉर्मल तो चाहिए जहाँ ओरी पोरी को है ऊपर दहेज़ हाँ हमने वॉशरूम बने थे ना ग्राम अच्छे ना त्याने वॉशरूम बने थे स्टोव थे ना हमने बाल वाली का रजे ट्रीट हम लोग वगैरह रखते हैं नेट पीसा फिर नहीं नेट पीसा करने से करा तो उस लेजे त्याने और बने हम लोग और रोग बने हो जिले में उस वक्त त्याने वॉशरूम बने एकदम ही कॉमी थी अपने और रजे हम लोग जो जब पानी पड़ रहा था पानी पड़ता है जैसे लाइक यानी कि तमिल हीलो यानी तने इंग्लिश ना सकने आप होने यानी कुछ होते हैं यानी त्यहाँ पछि आएर आर्मीहरूले पनि औषधि छर्किनु भयो अनि अर्को चाहिँ त्यहाँनिर रिलिफ मेटेरियल्सहरू ल्याउने मान्छेहरूले पनि त्यहाँबाट ल्याएको सामानहरूको फोहोरहरू चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ डिस्पोज नगरिदिने जताततै फालिदिने त्यसको कारणले चाहिँ जुन हाम्रो होल्डिङ सेन्टर थियो त्यहाँ चाहिँ एकदमै फोहोर चाहिँ एकदमै बढी भएको थियो अनि हाम्रो सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँनिर प्लास्टिकको बोतलहरू किनकि त्यहाँ हाम्रो पिउने पानीहरू अनि इभन त्यहाँ बस्नु जानको लागि पनि त्यहाँ बस्नुभएको मान्छेहरूले चाहिँ सबै मिनरलवाटर नै युज गरिरहनु भएको थियो त्यसको कारणले पनि त्यहाँनिर हाम्रो फोहोर चाहिँ एकदमै बढी भएर अनि त्यहाँनिर वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्रपरली नभएको कारणले चाहिँ तलबारीलाई लौकी फाल्नेले पछि त्यो खाना निर्माण पर्न सक्थ्यो बट हामीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो टिमले फोली हेरेर त्यहाँनिर फोहोरहरू उठाउने फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डेभलपमेन्टाइज किनकि कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ खाना खानु नभन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नै आफैले उभर खेलाएर खाना खाइदियो भने अनि कतिपय बालबालिकाहरू एकैले एक कुरो भएर बसिरहने उनीहरू घुलमिल हुन नखोज्ने त्यसपछि ऊ एकदमै उभा थियो

0: भी दस मिनट तक नमस्कार आज कोई पढ़ दो थोड़े पैसा दीपिका सही
1: Thank you.

0: उपयोग सब घासत्या के पाच लावा सहेता मौसमी तथा बेमौसमी गुण तथा है के जात तीन प्रकार विद्या के पाच था अपने मुर्गी बच्चा योजना बना रखी गलसी मुर्गी बच्चा के आधार अनुसार कर पा देखा
1: सबसे

करके ईश्वरी स्वामी अर्थात रक्षा प्रकार के पड़ा रक्षा प्रकार सब कहेगा अनुहार कभी ना होता है।

0: Radio Gurdwara FM Dwara Sahi Pujari Sadesh.
1: Namaskar, main Ratna Pradhan. Main aapka sahayog karta hoon. Kitna aapke liye khusha hoon. Sampurna manushya bhai aapka sukh swasthya tatha nirbhay ko hardik jeevan pane sukhana mein ek kala hai. Aapke मैं सभी तरीके से आपका आभार हूँ। इस बात का मैं नहीं

0: grup per el Partit Central, com en el cas també per els partits Santi Tongari, Santi Tongari, Mohamed Tarbon, Sons en Tarbon, Guarda per el Mopor, la Tarbon, la Costa, o Ulle, que per el Mopor, que l'Occet i per el Mopor, de la Tarbon, que era l'Ali, Mohamed i Palma, Tarbon, Sons en Tarbon, les Portes del Bocet, tot el Bocet, està molt bé, no cal tornar, cal tornar, Das Partisan Peripera, Partisan Pronimo, Kalchakarapana, Hoteli, Nepal, Karapan, Kursatan, Madhu, Mayukta, Dela, Dela, Chiti, Hara, Dela, Bihara, Parapa, Shai, Nepal, Hara, Chiti, Purti, Surup, Hara, Abasi, Karako, Upal, Kiyama, Ralakim, Hajaneri, Karapan, Red, Oxide, Kursatanka, Kara, Jalvan, Paribatan, Vitilaka, Dela, Samayama, Tadik, Pani, Kona, Pani, Johana, Dela, Sutamia, Putia, Bina, सुखा पीड़ित होते हैं तब परम प्रतिज्ञा निपाल का ये पर कहीं तो भी ना तानिक महान सुखा और गीम पहले रोज़ रखा था जान का सेट भी ना रहे तो समस्या ले निपाल सामना कर के लोग वहाँ पर डेली अत्यंतिक कर रहे हैं सर्जन का कारण जलवायु परिवर्तन हुई थी लोगों से निपाल उत्पादन मौसम में छेती व्यवहार पर लोग वहाँ बकिये डबाती
1: पटना राजापुर नगर पालिका का मुख्य बाजार क्षेत्र मनमा समय से लालपुर जापाई निशेखर बाल बिटोरी तथा अव्यवस्थित बसोबास मॉडल करीब 340 घर थे बना लालपुर जा वितरण प्रक्रिया का पढ़ना और बात नगर प्रमुख तीते स्थान पर नेतृत्व में वड़ा नंबर चार का अंतर बिटोर पोखर को वड़ा नंबर दस का पूरा तस्वीर सिवालाल थारू सहित कटोली भूमि व्यवस्था तथा सरकारी मंत्रालय मुख्य मंत्री रावत समक्ष आवश्यक कागजात सहित फाइल पेश कर मंत्री रावत बाल बिटोरी तथा अव्यवस्थित बसोबास संबंधित प्रक्रिया और जगह वितरण समिति का अवस्था बारे अध्ययन कर एक अथवा राजापुर बजार क्षेत्र पूजा वितरण प्रक्रिया आज पैदा विश्वास तिलक नगर प्रमुख थारू जानकार दिलवाद हमारा क्षेत्र में अलग अलग भूमिहीन सुकुमवासी तथा मुक्त कमैया को आत्मा पर आवश्यक समिति गठन कई प्रचलित एन तथा कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया आख पराजय जमा गिरता या कर आख अतिक्रमित कई दिन क्षेत्र में अलग बस्ती होते हैं वन कार्यालय का परिपत्र आय पास राजापुर का भूमिहीन सुकुमवासी तथा मुक्त कमैया का समस्या खर्च जटिल बना रहा समस्या समाधान मंत्रालय में पहल कई दिन मुक्ति कर सरकार से कर्म सकारात्मक निर्णय अलग नजीर बनाकर प्रक्रिया आगम पढ़ाई मंत्री रावल बटेलबाट लालपुर जा उपलब्ध करेन अभियान में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सांसद प्रतिभा कार्की को सदस्य धीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बर्दिया का सदस्य महेश कुमार चौधरी तथा राजापुर नगर सभापति इन बहादुर केसी लगाये उग्र समन्वय तथा पहल में सहयोग कर चला गिरना नगर प्रमुख थारू आवश्यक कागजात सहित फाइल पेश कर उसे प्रक्रिया जनता का पढ़ा खनगर नागरिक का हाथ में लाल पूजा पुकाए निरंतर पहल कर लगभग यह खबर राजापुर से मेन अधिकारी पठाई चाड प्रधान लक्षित प्रत्येक जिला का शांति सुरक्षा सुदृढ़ करना तथा नागरिक मैत्री सेवा प्रभाव सुनिश्चित करा निर्भरिक प्रभावित चौकी व सीमा नाका का स्थगित अनुगमन कई जिला जिला प्रशासन कार्य बर्दिया का निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी का नेतृत्व में उप अनुसंधान निर्देशक प्रहरी नायब परिचय तथा प्रशासनिक अधिकृत सम्मिलित टोली प्रहरी चौकी खैरापुर का प्रहरी चौकी खैरापुर का व प्रहरी चौकी सूरजपुर का स्थल द्वार अनुगमन का लक्ष्य अनुगमन का क्रम टोली संबंधित प्रहरी अधिकारी तथा कर्मचारी से शांति सुरक्षा नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह तथा चाड पर्व का समय में अपनाए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के विषय में छलफल गर्दा चाड पर्व का समय में विस्तृत संपादित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था र थप प्रभावकारी बनाए नागरिक का प्रभावी सेवा को सहज सुनिश्चित कर तथा गुनासो का प्रभावकारी संबोधन में प्राथमिकता तिलक निर्देशन देखेगा संभावित स्थानीय स्तर में शांति सुरक्षा कायम कर संबंधित निकाय समन्वय सूचना आदान प्रदान थप प्रभावकारी बनाए में जोर देखेगा उसी कटोरी लागू दुर्पेशा नियंत्रण तथा न्यूनीकरण का सूरजपुर का सीमा नाका में समय स्थल अनुगमन कर सीमा नाका में सेफ क्षेत्र लागू औसत को साथ प्रसाद तथा प्रयोग नियंत्रण का निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था आम तौर पर कार्य बनाए तथा जोखिम युक्त गतिविधि पर विशेष निगरानी पठेना निर्देशन दिए संबंधित निकाय बीच आवश्यक समन्वय गरी खबर तथा प्रयोग नियन्त्रण तथा प्रभावकारी रूप अब नियन्त्रण उपाय अवलम्बन गर्न समेत टोली निर्देशन अनुगमनका मुख्य उद्देश्य चाड पर्वका समयमा जिल्लाका शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न नागरिक उपायका सुरक्षित तथा सहज बाटोमा प्रभावकारी प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउन लागू सदुद्देशन तथा अवैध प्रसार प्रसार नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निगरानी थप प्रभावकारी बनाइरहन चाहन्छु। महासरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 विकास तथा सेवा प्रवाहमा प्राथमिकतामा ठेका गर्ने योजना तथा कार्यक्रम आधारमा वडा कार्यालयले प्राप्त बजेटका सीमाभित्र रहेका स्थानीय वार्षिक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्मित योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट नियोजन गर्ने बताएका छन् वडा अध्यक्षले। वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष लाल बहादुर छेत्री

साधु समुदाय का मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा के रूप में रहन सख्या नाच का दस्या का अवसर में कैलाली और खानगढ़ी में विशेष रूप में प्रदर्शन कर दस्या विशेष सामूहिक सख्या नाच प्रदर्शनी 2083 मूल आयोजक समिति बुधक धनगढ़ी उप महानगर पालिका का परिसर में विशेष सख्या नाच प्रदर्शन कर धनगढ़ी उप महानगर पालिका का नगर प्रमुख गोपाल खमाल मंदिरा बजार का सख्या नाच का उद्घाटन कर सख्या नाच प्रदर्शनी 2083 मूल आयोजक समिति का संयोजक स्थान चौधरी सख्या नाश का संरक्षण प्रवर्तन और स्थानांतरण करने उद्देश्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते कृष्णा जिला तथा महाभारत कथा वस्तु आधारित गीत में युवती हुकर सामूहिक रूप में गायन करना और युवा मंत्र धर्म साथ देना सख्या नाश थारू समुदाय का मौलिक पहचान धार्मिक आस्था कला भाषा परम्परा और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण प्रतीक महाबी परम्परागत रूप में अष्टिम तीन त्योहार से शुरू हो खदस्या प्रीति त्योहारी सम्मान कर

0: सामाजिक परिवेश तथा प्रख्यात कर्मशाला क्षेत्र की वो सीमित विधेयक आयोजक तथा न्यायधारा स्वस्थ अवस्था में मौलिक संस्कृति व प्रशासन पुगेन युवा युवती आपने संस्कृति और परंपरा से जोड़ना तथा सुख्य नाश और संरक्षण और पुस्तांतरण का सकारात्मक वातावरण निर्माण करना उद्देश्य ने एक दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना चुना गया। कार्यक्रम में थारू समुदाय का कलाकार युवा युवती सांस्कृतिक कर्मी तथा संस्कृति संरक्षण में रुचि सरकार वाला का सहभागिता अलग चुना गया। आयोजक कार्यक्रम में केवल नित्य प्रदर्शन का रूप में समुदाय का मौलिक सांस्कृतिक परम्परा भाषा कला को सांस्कृतिक पहचान अभियान का रूप में प्रेम चौधरी
1: सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पूर्व प्रधान न्यायाधीश चरेन्द्र सांसद विभाग का टोली आज दिन का काठमांडू बांसवाड़ी स्थित चरेन्द्र का घर में छापा

0: பிதாவா
1: தப்பாக்கி தானும் ராம் சொல்றேன் अठानब्बे दो जीरो तिरपन्न उनासी पचहत्तर र अठानब्बे चालिस सडचालिस उनसत्तरी पच्चिस

0: సంవత్సరం సరికాని ఒక దేశ చారీకారణ రాష్ట్రపతి సమక్ష సిఫారసు కార్యం రేపు బయటలోకి రాష్ట్రీయ గౌరవ అధికార ఆయోగ పరిస్థితి పొందేదానికి సిఫారసు పైక అధ్యక్షుడు జనాపడి తై చేతి పూర్తి ఉపలబ్ధ స్వీకృతి దీని నిర్వహించారు. निर्वाचन प्रहरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को पोशाक खरीद संबंधी अध्ययन उप समिति ने 19 बजे कार्यविधि र कार्य अपवर्ती सर्वसमिति ने पारित गरेको छ. आज सिंहदरबार में बसेको उप समिति के पहिलो बैठक में उक्त कार्यविधि सर्वसम्मत रूप में पारित करते सभी सदस्य हस्ताक्षर गर्नु भएको हो. समिति का उपसभापति मनीष झाले समिति समय सीमित समय भित्र प्राप्त कागजातहरूको अध्ययनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो.
1: मसौदा जुन प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो मसौदामा सामान्य व्याख्या गरेर हामीले सबैजनाको सर्वसम्मतिमा पास भएर सबैजनाले हस्ताक्षर गरिसक्यो. त्यस पश्चात हामीले जुन हामीलाई प्राप्त प्रमाणहरू छ प्राप्त प्रतिवेदनहरू विभिन्न निकायहरूले गृह मन्त्रालय मार्फत जुन उपसमितिलाई सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको छ त्यसको अध्ययन कसरी गर्ने र कुन प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र आगामी बैठक आउँदै गरेको
0: उपसमितिको बैठक आज पहिलो पटक बसेको र अब आगामी बैठक दसैँपछि मात्र बस्नेछ.

0: Campana, son itinerarios sonidos. Apa sungguh us, terus saja.
1: Di kesuruh kesabutan dan saya dipayamat di sepati satu polis kesana sangkia utara putra untuk kimasan. Pasutit tetap penyari karena jangkul tetap dipakai karena suriam diri menyebutnya mutlu untuk kim melalui bersa. Di sesuatu kesabutan ini juga dipilih dan ikhlas kram sama nun sebanggalu upayuk tamulai salah hatiye kusah.
0: Nirmit rupma hidul रासायनिक व्यायाम ले मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
1: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्र, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिल्लो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सक्ता र फल फुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ। सुखमय जीवन
0: वीडियो को बाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।

अंतिम सही मोहिलो पर्व अपना सरकारी तथा प्रमुख पसंद आज करी किसान जो फोन दर्शन सेवा निशा दर्द को पसंद की स्वस्थ जीवन अपने निशा दर्द

0: आदमी पढ़ना पढ़ा कोई ना अच्छी परिचित पसंद श्रेष्ठ मजे करते
1: हमारे यहाँ केंद्र जाकर को बिया पिजरे गुरुतम ये मेरे तिरुपति जाकर को बिया चाना मस्ती केरम दिया संग घास दिया के पानी का वसाय का मौसमी तथा बेमौसमी उन्नत तथा हाइब्रिड जाकर तीन प्रकार दिया के पानी का
0: संग संग आपके बिया की कीमत छोटा छिपी हुई मुर्गी तरह करना पशु आहार किसी औजार किनारी का सामान तथा फुटकर उड़ना पानी का
1: अपना मुर्गी पत्ता योजना बना रखी तरह से मुर्गी पत्ता के अपने अनुसार का पानी था
0: कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक रूप में घास रही कर दिया
1: कैसे ही तक मारे मारे देखा दी ना आपका चला ना तो कुछ नहीं करे सब सब कुछ नहीं करता ये तो अपने चल देगा कुछ करे तो कुछ सब दिखावा नहीं रहता
2: दिखावा वो भी नहीं होगा तो कभी कभी नहीं करता है मैं पानी में दिखा चाहता कभी समझे एक बार क्या करेगा

0: युद्ध समय लगे तपाई परिचित श्रेष्ठ एयरोटेक में विभिन्न किसिम का युद्ध बारी का वीर किसान आई सकते
1: परिजात में सुरक्षित कर्तोरी उन्नत जात में मोरंगी केराव लोकल केराव सिक्किम अर्किल केराव चना राजमा नरसिंह घास गहूं केराव को बीउ आलू को बीउ रसम को बीउ विभिन्न जात का तरकारी का बीउ
0: पशु पक्षी को औषधि कुखुरा पालन व्यवसाय करने का कुखुरा का बच्चा कुखुरा को